0: इंस्पेक्टर नहीं, ब्लैक कोबरा।
1: मिस लवलीना, 34A 7th रोड, विले पार्ले जुहू।

0: क्या हुआ? पुलिस तो हमारी मुट्ठी में है।
1: यू डोंट टॉक नॉनसेंस।
2: पिंटो,
3: यस बॉस।
2: माल अंडर वाटर टनल से क्लियर होना चाहिए।
3: अंडर वाटर टनल इज रेडी।
2: गो अहेड।
4: होल्ड ऑन। हैंड अप।
5: टर्न ऑन BBB FM.